नमस्कार श्रोता बंधु, शुभ सकाळ। आपण माने सुनुछंते 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो काटक तल से तल तक। आज होचे इंग्रजी तारीख 20 तारीख मे मास 2026 मसीहा बुधवार 1948 सकाब्ध मास बैशाखर 30 दिन एवं समय वर्तमान स्टूडियो घड़ी रे 5:58:21। आमर समस्त श्रोता बंधु मानंकु स्वागत जणी आमे आरंभ करूछु आज सकाळर अधिवेशन कार्यक्रम। आम केन्द्र रे सुनुछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो काटक दिल से दिल तक। देवमित्र आज आपणंक सहित

打胜。प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये दो दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और

0: नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार श्रोता बंधु, शुभ सकाळ। आपण माने सुनुछंती 107.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक तलसे तलतक को समय वर्तमान स्टूडियो खड़ी रे 6:55 एवं आपणक पाई मोने यासिची भावभक्ति भरा कार्यक्रम अर्घ्य थाली। हां, गोटे नुआ सकाळ, नुआ आशा, नुआ ऊर्जा।

ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानामधमर्स्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। हाँ, जितबले धर्मर हानि हुए और अधर्म बढ़ी जाए सेतबले मु पृथ्वी रे अवतार नहीं थाए। ए शिक्षा केवल भगवान का अवतार विषय रे नोह, एहा आमो भीतरे थिबा भूल बा अंधकार को त्याग करी निज भीतरे थिबा आलोक को जाग्रत करिबा। हाँ, अंधकार जिते बढ़ी

गुड मॉर्निंग ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एवं रेनबो कार्टिक दिल से दिल तक कौन दिल से दिल तक रे मॉर्निंग अपडेट को नहीं की देव मित्र आज आप सहित एंड आज वेदर अपडेट रो हमें स्टार्ट करवा आज अपडेटेड खबर हाँ एबे तो दुई तीन दिन हला प्रबल रु प्रबल मात्रा रे गरम अनुभूत रहौछि तबे

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे अथ वार्ताः भारतं तथा नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क फिनलैंड आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं हरित प्रौद्योगिकीं नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में

कानूनी सहायता टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम्हें इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सूझता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
1: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
0: सुना।
1: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार

0: रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अभी संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
4: India is accelerating towards universal health coverage.
5: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध
4: हैं। Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
8: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
5: इस योजना के अंतर्गत राशि

0: पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
2: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरे तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
3: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
5: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार तीसरे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन

0: का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
2: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honor of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture

गुड मॉर्निंग आपने ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक कौन दिल से दिल तक कृतव मित्र अच्छा आपण सहित वर्तमान स्टूडियो घर समय आसी जाए 8:31:05 आसंत शुणी नवा आम समस्त पसंद कार्यक्रम मो पसंद

Good morning, apna mane tune kar chandi 100.4 Akashvani FM Rainbow Katak dil se dil tak ko and dil se dil tak re devamitra aaj apananga sahita ha studio kar re bartaman samay se jechi round avaji goti minute 32 second ebong apna mane sunu chandi darling live show start he jechi and devamitra apananga sahita achi kintu jibon re na amo pakare anek prashna pahunchi thae pratidin sakale एमिति जने व्यक्ति थांती बा एमिति किछि कथा थाए जहां आमको आगो को बढ़िबा को प्रेरणा दे थाए आमो मन भितरे शक्ति जगे थाए केबे केबे आमको आगो को बढ़िबा पाई प्रेरणा आमर मां को ठु मिलि थाए केबे केबे आमो परिवार ठु मिलि थाए केबे केबे आमो स्वप्न ठु मिलि थाए किने कि आमो बैक रे थांती जे आमको प्रति टाइम रे पुश करि थांती आपण लाइफ रे भी एमती किए थे जहां जी आपण को प्रतिदिन पुश करती किसी नुआ करने किसी इनोवेटिव करने किसी एमती गीत थी जहां आपण को दिन को पूरा एनर्जेटिक कर दो किसी गोटे शब्द थी जो थी आपण मूड पूरा बुस्ट हो जाओ यस ताहले आज आम कथा जे आज सकाल आपण को सब अधिक मोटिवेट कर ताहले शेयर करंतु मो सहित कॉल करंतु नंबर हेउची 0671-230-3153 रे कॉल करके जणंतु कि आज सकाळे आपण को सबोछ अधिक मोटिवेट करथिबा कथा टिए कोण निहात भाबरे आपण को कथा शेयर करंतु मो सहित चलंतु देखिबा आज प्रथम कलर के आछंदे एंड से कोण कहउछंदे

0: सुनील शेदी अप्रमाणे देवो मित्र को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे अंदर से दिल तक रे शो चाले छे डाल इन लाइव रे चलन देखिबा मते की आज हमरो प्रथम कल डाल करू छन ध्यान से कण कहू छन दे आज रे टॉपिक को नी माय बैड कॉल टी कट जाय जी किंतु किछि कथा नै आपण माने डायल करि परबे ऑन द नंबर 0671203153 रे एवं शेयर करि परबे आपणक कथा मो सहित चलन त देखियौ हमर नेक्स्ट कॉलर के आछन दे एनसी कण कहू छन दे हेलो
1: गीता जे व्याख्यान करे ताहा थारु नै मो अधिक प्रिय गीता जे व्याख्यान करे ताहा थारु नै मो अधिक प्रिय श्रोता आउ वक्ता उभय मुख्य लवंती नमस्कार देवमित्रा मैडम जी
0: नमस्कार के कहउछंती कोट कहउछंती
1: मु प्रशांत कहतली राजंस कटक रु
0: केमती अछंती
1: बहुत भल अछि मैडम आपन के संगरे अनेक दिन रो व्यवधान परे टिके सुजग सृष्टि हे छी
0: अच्छा आज टॉपिक ऊपर कहंतो आज सकाळे
1: आपन को टॉपिक ऊपर सकाळ चर्चा कर दैछंती
0: आज सकाळे आपन को सबठे अधिक मोटिवेट करथिबा कथाटा कोन
1: गीतार प्रत्येक लाइन आमको वास्तविक जीवन रे सांगातिक मैम एनर्जी जगाए एटा ही तो वास्तवता मैम
0: अच्छा ताहले आज सकाळु आमर अर्घ्य थाळी रे आपनको गीता रिलेटेड जहा सुनिबा को मिलै
1: छै मैम मु अनेक दिन आगुरु ही ता सहित संश्लिष्ट मु जानि छी जीवन रे वास्तवता कोनो आ मु चाकचक्य आ विलास वचन पछरे गोडाइनी
0: आज्ञा तो आपण प्रतिदिन सकाळ गीता पढंते ओ सेटा ही आपण को मोटिवेट करे
1: गीता प्रतिति बा अर्थ पंडित न है किंतु तार गोटे ओडिया अनुवाद पूरा 18 अध्याय रे अछि मो पाखरे एवं मु ताको अनेक बार पढ़ी छी हमें मैं आपण को गोटे अनुरोध करबी आपण अधिकारी अधिकारी के स्वतंत्र फोन टिके धरिया को टिके चेष्टा करन ताकि एई टॉपिक माध्यम रे किछ रियलिटी टिके प्रकाश पाइबा दरकार
0: रिहाती भाबरे बहुत बहुत धन्यवाद आपनका को कथा म रखबा के चेष्टा करबी एवं आपन जेमती कहले आपन को
1: मैम आपन का नाम रे गोटे चर्चा कोन की हेलो
0: किछ कथा नै कॉल टी कटि जाय छी किंतु आपन माने कॉल कर परबे ऑन द नंबर 0671203153 रे एवं शेयर कर परबे आपनका को कथा मो सहित जे आजिर सकाळ रे आपनक सबठो अधिक मोटिवेट करथिबा कथा टे कोन निहाती भाबरे शेयर करन तो ऑन द नंबर 0671203153 चलन देखिबा हमर नेक्स्ट कॉलर के आछन दे एंड सी कोन कहू छन दे आजिर टॉपिक को नै हेलो
2: हेलो जय जगन्नाथ राधे राधे
0: जय जगन्नाथ राधे राधे के कहउछन थी कोट कहउछन थी
2: मैं बरामदार एजी ऑफिस हाई कोर्ट कहउथली
0: अच्छा आज सकाळ एमती कोन कथा जहा आपन को मोटिवेट करै छे
2: मोटिवेट मु डेली सकाळ को ठाकुर पूजा बेले मु भगवान श्री कृष्ण रो अष्टोत्तर नामटा ये परखाए ठाकुर घरे पूजा मोर डेली मोटिवेट आउ जे गाडे सारी के आगो ठाकुर पूजा करबी सेठ भगवान श्री कृष्ण रो अष्टोत्तर नामटा को आगो मु सेठ जप करे आया
0: अच्छा ता पर आपन को आपे आपे सब मोटिवेशन मिले जाय थाय ना कोन नहीं सर कोई भी समय कथा ही पारिबानी किंतु
2: गोटे मिनट भी शेष कर दे गोटे दि मिनट भीतर बहुत बढ़िया जिन
0: जानी कि बहुत भल लगिला जे आपण भगवान श्री कृष्णक ना रुही दिने दिन दिनटी आरंभ करू छेंती
2: एवं सेटा हला भगवान श्री कृष्णर अष्टोत्तर नाम बुझिला गया पद्म पुराण पद्म पुराण 104 पुसार पद्म पुराण 104 पुसार भगवान श्रीकृष्ण अष्टोत्तर नाम डेली सकाल संध्या पढ़ले बहुत किसी घर मंगल पिला मंगल रज माइंड फ्री रोत किसी अवतार नाम से सब दस अवतार नाम अन्य बहुत रही पूरा मुखस्थ से मन रखी बहुत।

मु कहा पाए भला तो आओ कहा पाए खराब हेले सत कथा टा एटा जे जे मते जेमिति बुझी छे मु ता पाए ठीक सेमिति हां जे मते बुझी छे मु ता पाए भलो आओ जे मते बुझिनी मु ता पाए खराब सुनिछोदि आपण माने देव मित्र को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे एंड स्टो सो आरंभ होई जाई छी रेनबो एसएमएस रा जो छी आपण माने निजर खास लोक मानन को किछि खास गीत डेडिकेट करि थांदे ताले जदि आपण निजर खास लोक मानन को किछि बिरवल सा गीत डेडिकेट करबा को चाहू छोदि ताले बिल्कुल भी लेट करंदो नि निजर इनबॉक्स को जान तो टाइप करंदो FMRC स्पेस दे आपण को गीत सुनिबा को चाहू छोदि तारना स्पेस दे गीत टिको फिल्म एल्बम रो सचि तारना लेखंदो एवं परे परे कहा को डेडिकेट करबा को चाहू छोदि आमत्र रे तांग ना लेखंदो एवं परे परे निजे ना गा ठिकाना लेखि पठी दियंदो आम पाखो को पठिबे पई नंबर टि हिउ छी 09495963210 आपण माने चाहिले हमको व्हाट्सएप माध्यम रे मध्यम एसएमएस करि पारिबे व्हाट्सएप नंबर टी होउछि 8895254200 यस आपण माननको एसएमएस अपेक्षा रे देव मित्र श्योर रहिबो चलो तो देखबो आजर फर्स्ट एसएमएस के कोठ लिखि छंदी एवं से कोन सुनिबा को चाहि छंदी एएसएमएस करुछंती नियाली कटक रो लोरा महांती सुनिबा को चाहि छंती मैंने प्यार किया रो टाइटल ट्रैक टिको निहाती भाबरे आपण को मनपसंद रे गीत म आपण को शेयर सुनेबी नेक्स्ट एसएमएस करुछंती बासंती लक्ष्मीप्रिया रोजालिन दिव्यचंदन विश्वरंजन सूरज कॉलोनी मदन मोहन रु आसुची मेसेज टी पटिया भुवनेश्वर रु एवं डेडिकेट करुछंती से गीत टी को लिजा रानी कल्याणी सुरेखा रश्मि मामी लता नानी एवं समस्त आर्जी और स्टाफ मानों को लिखुछंती गुड मॉर्निंग ऑल सुनिबा को चाहि छंती एमिति रंग दे एल्बम रु से टाइटल ट्रैक टी को निहाते भाबरे आपण को मनपसंद रे गीत म आपण को शेयर सुनेबी ताले चालन तो बिल्कुल भी लेट न करी सुनि नबा बैक टू बैक ए दुटी ब्यूटीफुल ट्रैक को

सुनिश्चित रेनबो एसएमएस को देव मित्र सहित 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे चलने देखिबा परवर्ती एसएमएस रिक्वेस्ट के कोठ पठी चांदी एवं कौन लिखि पठी चांदी एही एसएमएस आसुचि सीडीएस सेक्टर 7 मरकत नगर कटक रु पठी चांदी प्रेम जी कम्युनिकेशन नु प्रेम जी भाई लिखि चांदी गुड मॉर्निंग टू ऑल जय जगन्नाथ जय हिंद एवं गीतटी को से डेडिकेट करू चांदी स्पेशली तंगर बंधु दिबाकर सुबोल भोई समस्त आरजे समस्त स्टाफ एवं समस्त श्रोता मंडली को सुनिबा को चाहि चांदी जुर्म चलचित्र रो जब कोई बात बिगड़ जाए कुमार शानू एवं साधना सरगम का कंठरे निहाती भावरे ब्यूटीफुल से गीत आपन को मु श्योर सुनेबी सुनो थांतो एवं ट्यून करके रखितांतो 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक को

सुनुथांत झुमुथांत ट्यून करके रखी था 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक किंतु एबे समय मते इशारा देलाने आपण समस्त को टाटा बाय बाय कहि के जीवा पाए किंतु हां ई जो बढ़िया खरा होचे निज को हाइड्रेटेड रखंतो सुस्थ रहंतो एवं समूह बेले पाए सुरक्षित रहंतो किंतु मु जाउ आपण को बिल्कुल भी एकुटिया छाड़ दे जाउनी कहि के ना मो परे परे आसी जाउ छंदी आपण को प्रिय आरजे सिउली आपण को सहित दिन तमाम रहिबे एवं ढेर सारा गीत सुनैबे मीठा मीठा कथा मध्य कहिबे आज पई देव मित्र को विदाई दियंतो लव यू ऑल टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे ahead.

0: जिससे 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni and President Sergio Mattarella and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus specially on the India-Middle East-Europe

आउ एक सुंदर मेसेज टी आसी पहुंची जाइछि बासंती मेसेज करी छंती लिख छंती गुड आफ्टरनून दीदी हेमंत चांद मेसेज करी छंती माणिया बंध बडंबारु एवं सी लिखी छंती जे धैर्य एमती गोटे शब्द जहां मणिषकु परिवर्तन ओ सफलता देबारे सहाय्य करिथाय आजकल के युवा पीढ़ी माने धैर्य कोन जानिबेनि किंतु पछरे जानिबे जे सेमाने 2G रु 5G परी 2G जेमती स्लो चले किंतु परे खुशी दिए किंतु 5G बहुत जल्दी चले किंतु अधिक चलिबा द्वारा किछि भूल करी बसंती युवा पीढ़ी यस 5G सिना जुगरे आमे बास करूछु एवं 5G फटाक से सरी जाय हमरा नेट कनेक्शन 2G किंतु स्लो स्लो चले किंतु बहुत समय धरि चले ठीक सेही बड़ी भाबरे आम लाइफ रे मध्ये धैर्य रो स्थान गोटे गुरुत्वपूर्ण रहिछि बहुत बहुत धन्यवाद आपण दुई जणंकु जे एते सुंदर मेसेज माध्यमरे आपणकर मतामत हम सहित शेयर करले तेणु साथी आपण काय डेरी करछंदी आजकल जो मोबाइल बैटरी आमर सरी जाउछि जल्दी सेमती लागुनी आपणकु जे आमर धैर्य मध्य आमी धैर्य हरा हे गेलेनी धैर्य सरी जाउछि आमर सो ए विषयरे आपणकर मतामत कोन रहिछि आमको एसएमएस माध्यमरे जणांतु एसएमएस करिया पिन टाइप करंतु FMRC स्पेस दे आपनकर मतामत लिखंतु तापरे आउट के स्पेस दे आपनकर नाम एवं ठिकाना लिखि के आंबाकू पठाइ दियंतु 09495963210 रे नंबर या सहित मध्ये हमकू व्हाट्सएप करि परिबे 88952542200 नंबर रे हमकू व्हाट्सएप करंतु।

0: मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास डीआरडीओ की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल

0: कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
2: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी ऐसे बहुत सारे

0: अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना

0: किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री, वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
2: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULBGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुचंती जितेंद्र कुमार नायक। मुख्य संवाद, ओडिशा रे पुंजनिवेश और शिल्पायन क्षेत्र में जापान अधिक सहयोग करिबो कहिले मुख्यमंत्री। युक्त दुई परीक्षा फल 85.85% परीक्षार्थी उत्तीर्ण। राज्य में स्वतंत्र सघन भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया एक गुरुत्वपूर्ण पर्याय आज आरंभ। ज्येष्ठ मास कृष्णपक्ष चतुर्थी तिथि पूरी श्रीमंदिर आज अनुष्ठित हो श्रीजीव बनक लगी नीति। मनीष और पृथ्वी महुमाछी सहित एकाठी बार्ता नहीं आज पालन विश्व महुमाछी दिवस। चलित सप्ताह शेष सुधा राज्य विभिन्न स्थान में 2-3 डिग्री पर्यंत तापमात्रा वृद्धि पाइबा नहीं पाणीपाग विभाग अनुमान। कोलकाता अवस्थापित जापान उच्चायुक्त इशिकावा योशिहिसा आज लोकसेवा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को साक्षात करी जापान एवं ओडिशा मध्य संपर्क को सुदृढ़ करने ने आलोचना करिछन्ते। राज्यर विभिन्न विकासमूलक प्रकल्प में जापान सहयोग और संप्रसारित होता वाणिज्यिक संपर्क को मुख्यमंत्री प्रशंसा करिछन्ते। ओडिशा रे पुंजनिवेश और शिल्पायन प्रयास में जापान निजर अंशग्रहण को आहुरी वृद्धि करिव बोली श्री माझी कहिछन्ते। आलोचना समय राज्यर बौद्ध सर्किट एवं अन्यान्य प्राकृतिक पर्यटन स्थलीगुड़िकर जापान सह पर्यटन व्यवसायर विकास पई मुख्य माध्यम हेबो बोली बैठक जणापड़िछि। राज्यर युवक युवती मानकु जापानरे निजुक्ति सुजोग सृष्टि करबा लक्ष्यरे जापानर केतक निजुक्ति प्रदानकारी संस्था ओडिशा आसियो बोली जणापड़िछि। जापानर तत्वरी राज्य एवं ओडिशार उच्चस्तरीय प्रतिनिधि दल गस्त कर कला संस्कृति इतिहास एवं ऐतिह्य क्षेत्र में उभय देश मध्य पारस्परिक सुसंपर्क स्थापन करिबे। ओडिशा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सीएचएससी द्वारा परिचालित युक्त दुई परीक्षा फल आज प्रकाश पाई। चलित वर्ष 85.85% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते। कला पाठ्यक्रम 84.5%, विज्ञान 88.82%, वाणिज्य 88.07% और धंदामूलक पाठ्यक्रम 77.62% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते। विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड भुवनेश्वरस्थित शिक्षा परिषद कार्यालय में परीक्षा फल पुस्तिका को उन्मोचन करते।
1: ତାଙ୍କର ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ତାର ଆଜି ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର ବି ଆଜି 3 ସମୟରେ ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି results.odisha.gov.in ये गोटे वेबसाइट रही सहित तो आहुरी भी रही results.digilocker.gov.in ये दीटा वेबसाइट मध्यम आज 3 समय से रिजल्ट विषय अवगत हो पारे।
0: चलित वर्ष प्राय 4 लाख छात्र छात्री युक्त दुई कला विज्ञान वाणिज्य और धंदामूलक विषय परीक्षा देखते। स्वतंत्र सघन भोटर तालिका संशोधन एक गुरुत्वपूर्ण पर्याय आज आरंभ हो। गत मध्यरात्रि पुराना भोटर तालिका को रद्द कर आज परिगणना फर्म मुद्रण कार्य आरंभ हो। राज्य 3,40,00,000 अधिक भोटरों पर समान संख्यक परिगणना व एनुमेरेसन फर्म मुद्रण कार्य अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुशांत कुमार मिश्र कहते। फर्म मुद्रण होगापर चलित मास 30 तारीख बूथ स्तरीय अधिकारी घर को घर जा प्रत्येक भोटर को परिगणना फर्म प्रदान करेंगे। आवश्यक स्थले संपृक्त भोटर अनुपस्थित बूथ स्तरीय अधिकारी सर्वाधिक 3 भोटर निकट को जिबे। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुशांत कुमार मिश्र सूचना अनुयायी परिगणना फर्मगुड़िकर मुद्रण स्वतंत्र पदक्षेप ग्रहण कर प्रत्येक जिलार जिलापाल तथा जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्यक्ष तत्वावधान।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं है, यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

गोलाप तार घर दुआर सोफा उपरे बसी कणी चाहे मो आड़ टिके मुरुक देला हसी गली रे प्रेमिका घर नाम कृष्ण चुड़ी।

फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी, सब है भाई।

हमारी दोस्ती एक दूजे से ही पूरी है, वरना रास्ते के बिना तो मंजिल अधूरी है। यस, आपणक बिना जिमती आमे होचो अधूरा एवं आम बिना मध्य आपण अधूरा। आपणकर आमर जो दिल रे दिल कनेक्शन जो रही छि, सो परस्पर भीतर आमे मध्य कथा मध्य शेयर करूछु। केते कोन कथा आमे शेयर करछु, एसएमएस माध्यम रे, फोन कॉल्स माध्यम रे, गीत माध्यम रे, किंतु कौन करिया साथी सिउली वर्तमान आपनको ठारु विदाय नबा को चाहू छी, काई ना घंटा घंटा टिक टिक हे कहलानी आपनको ठारु विदाय नबा पई, किंतु मु त आपनको एका करिक जीवनी आ जने साथी असी जोडी हे गेलनी आ एठी मते उपस्थित अछंदी एवं जोडी हेबे किछ समय मध्ये रे, तो सेते बेळ पर्यंत आपन एन्जॉय करथां तो मीठा मीठा गीत ओ सिउली को दियंतु विदाय, किंतु कथा देली आ गोटे भलो दिन रे आपनको साथे देखा हबो, तनो आज मै मते विदाय दियंतु, रहू छी, नमस्कार।

0: कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत
1: धन्यवाद मैडम
0: कौन कहे आज टॉपिक विषय
1: देखु मैडम नईकूल कथा जेहतु कही बर्तमान गोटे आम पुणा स्मृति कथ मन पड़ी आम साप नदी बही जाऊँगी जहाँ समुद्र आम समुद्र नुह महानदी बेची किंतु से नदी बर्तमान आउ ना नदी में सब पठा है सब तंदी उठीगला पुणा कथा कहले नईरे से बहुत बाली था आम जिते सब पवन खाया जीव सन्ध्या बेले से बाली शोकि राति दिटा तीन टाइम शोक आसो गोटे आम अनुभूति हूँ पैंतीस चालीस वर्ष कथा मुझे निहाती सांग बुलाबूली कर खेलू बाली रेसिकी बहुत जिनस खेलाखेली करू मोर मन पड़ी आते राई दिन था राई दिन सब देखिए गोटे खेलाखेली कर गस पत्र सब ये सब मन पड़ चुम कहीं सब अनुभूति आप मन पक किंतु से अनुभूति मन पकड़े छोटे बेल कथा मन पकड़े बहुत दुख लगुच्छी किंतु से नई कथा ना बर्तमान तंडी उठिक बर्तमान नई मानने से मैंने बर्षा दिन भी पा आस
0: पाते
1: सब पठाई गला
0: अच्छा अच्छा किंतु सही जगह को नहीं कि किंतु अनेक मेमोरी अच्छी जहाँ को मानने आज कल उपभोग करते संभवपर हो पार नहीं
1: ना मैडम देखो बहुत पानी होता आम साप नदी कौन कि अंका बंका रास्ता जा तेणु से आम से गाधा गुदी करू नदी मोर मन पड़ी बहुत पहरीपट सोट जाहरा पहरी करू एसब कथ मन पड़ी आ नदी कूल कथा जितने कहे सन्ध्या बेल कथ मन पड़ी सन्ध्या बेले जाए शुआसु कर खेलाखेली कर बहुत कथ मन पड़े ये
0: से नईकूल शोक जो कहले राति गोटे दिटा पर्यटन भी रुहत खोला आकाश को देखे कौन फिल करती
1: निश्चिंत मैडम से अनुभूति कहीं कहते मानते तारा पड़ थ जन पड़ थ सुलसुल पवन हो आउ से अनुभूति कहीं कहते मैडम से अनुभूति आउ ना सब बर्तन लिधि गला आउ नजर किसी ना बाली भी टी ना पठा ना कहले बहुत दुख लगुच बर्तन
0: हाँ यहाँ जोटा कहले नि अति सत कथा परिवेश धीरे धीरे जमती खराब हो जाऊ आम आम प्राकृतिक परिवेश को हर चलीछ दिनक दिन आउे सब सिचुएसन आम बढ़ी जो सब परिस्थिति परिवेश आम बेले बर्तमान आउ से सब ना धीरे धीरे कमी गला
1: हाँ मैडम से पुनरावृत्ति कले हबनी बर्तमान नदी आस्ते आस्ते तार अवक्षय गला नदी भी जत्न नहीं पार ना समस्त सब बर्तन पठा आ नदी में किसी ना गोटे सैड जाए नदी जाए गोटे सैड रखी मैडम नमस्कार
0: आज्ञा नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित तो जोड़ी हेले सुंदर कथा कहले तेरे ये गोटे रिक्वेस्ट रस्त प्रकृतिर जत्न नवा दरकार आम परिवेश आम हाथ में आम प्रकृति आम हाथ में तेणु तार जत्न आम जदि नवा आमको गोटे सुंदर जीवन उपहार से ही दब निहाती भाव में देखा नेक्स्ट कल किए कर आज विषय हेलो
2: हेलो नमस्कार
0: नमस्कार किए कहते कौट कहते आज्ञा कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत
2: नई कूल कथा आम घर पाखे नई
0: आज्ञा
2: गेंगुटी आईतरणी दीटा धार आम
0: अति सुंदर जाई छंती नई कूल को बुलिबा को
2: नई मिसि जाई छी गोटे फरक रे कोला पानी आ गोटे फरक माटे पानी गेंगुटी पानी ता सफा एपट ब्राह्मणी तरण पानी ता गोलिया
0: अच्छा
2: पर जो अषाढ़ मास रे
0: अच्छा
2: आम तो नई कूल कथा संध्या दे सारी की पळेबु नई कूल जी
0: प्रतिदिन
2: सब सांग पिला पलेबू बाली टिके आड़े देबू ऊपर बाली ताती थिबो टिके आड़े देबू सेठी बसिबू कसम मजा करिबू दौड़ा दौड़ी खेलिबू आने आ सकाळे स्कूल रे आसिबू तो सकाळे स्कूल बैग फपाड़ दे नई कि जीवू बुड़ीबू बापा घर को आसिले बापा पार्टी करिवे तापर जदी थंडा जर हला वाला गाली हेला तापर दिन कहबे ए दुआरे खरार छिप पकेई जा छिप सुखी नथु आसी घर पहुंचियो
0: त माने घरे एकदम जगंदी
2: पूरा जगिए
0: अच्छा
2: हम घर पाखे रोड पोला आछि जदी भाई भाई के जाईथिबे देखि देथिबे आमे पहर दु गोटे बॉल जाई के जाईथु
0: अच्छा
2: आबु फपाड़ी देबु के केते बाट जाई बॉल टा आगे आनिबो पहर
0: माने के केते बाट पहरि के जाई परु छि
2: पहरि के जाई परु छि कॉम्पिटिशन होबो
0: अच्छा
2: आउ आसिक भाई जदि देखि देथिबे आसि बापा को कह दे आइला पर जो मार दो
0: नुवा केस आ गोटे
2: हो हां
0: संध्या
2: संध्या
0: ଆଜ୍ଞା।
2: ଆଉ ଶାଶୁର ପାଖରେ ଟିକେ ଦୂର ନାହିଁ, ଆମର ବାପ

0: कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत
1: धन्यवाद
0: कौन कहिबे आज रो टॉपिक विषय रे
1: नईरे छोटे बेले जो मंदिर गुड़ी बाहर बड़ी बहुत मजा लगे
0: बाली रे गड़ी चंती ता माने मंदिर नई केमती पार हो जाती पहरिकी जाती ना डंगा साहज रे जाती
1: पहरिकी जाउ
0: पहरिकी पलांती केवल जामुकुली पई बहुत सुंदर बहुत सुंदर नई को नहीं आप सुंदर मेमोरी रही सांग मान सहित आउ कौन कहे नई विषय धन्यवाद आम सह जोड़ी हेलो हेलो
1: हेलो
0: हाँ कहतु हेलो कौनसी असुविधा बशत हुए तो आम ऑडिबल हो पारना शुणा जाऊना ठीक से तेरे नई को लेकिन अनेक कथा थाए तथा नई को लेकिन आमको सतर्क रहा भी बहुत बेसी जरूरी थाए हेलो
2: दीदी नमस्कार
0: नमस्कार किए कहते कौटू कौ
2: दीदी शिखरपुर रु ममता बेहरा कह
0: कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम को बोधे प्रथम थर कॉल करी छंती अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करी जोड़ी छंती तबे आपणकर तो आखा पाखरे नई अछि निहाती पूरा देखा जाउथिबो कोन कहिबे नई को नै कोन मेमोरी
2: नई को नहीं बहुत मेमोरी अच्छी दीदी आमको नई की जीवा गाधी बहुत भल लगे आगे बहुत दिन मान लुगापटा लेकिन बस कचाकची कर गाधी पदे आसबू चार्टा बड़े सांग साथी सब सांग सत झील सब सांग सांग मैंने सब से बस कि आंब लेंबू सब कमला लेंबू सब लेकिन बसिकी से बड़ कूद अच्छी पथर आम सब से बसिकी संध्या बेल को जा सब खटी करू
0: पूरा तो सही रूट रे नई पूरा देखा जाउची से साइड रे आपण टाउन रे रहिके भी नई रा मजा पाई परचंती अति सुंदर भाव रे नै
2: नई बहुत भल लागे
0: से हिसाब रे भारी ब्लेस्ड आपण
2: बहुत खुशी लागे
0: बहुत सुंदर
2: बेले बेले पानी तो कमी जाय थिवो नई रु आमे पळाउ पठा को चाली किनी बाली जे बस पळाउ आ सारे एंटी हेई छी सब संग माने जाय छु गाथे जेहरे नई पानी सुखी जाय छी कोड़ी टाइम अच्छी पठार कोड़ी भर्ती सब सांग नई
0: बाकी
2: लुगापटा सब चार पोती देकनी सब पलैचु पठा को
0: अरे बाप रे
2: पलैचु घर लोक सब जाइन लुगापटा नहीं आसपुर आम आस खोजला पूरा पाई जो घर को आहुत वाड़ खाई से बहुत मानते ये मेमोरी
0: मन रही जाइए से
2: कथा
0: पुणी कर घरे जणै कि जानती
2: घरे कहि कि जाऊ
0: आ सेमती लुगापटा पोती कि जानतिनी अच्छा बहुत सुंदर आपनकर से पोट बहुत सुंदर व्यू भी आसे बढ़िया लागे से पोट बुलाबुली करबो बहुत सुंदर कथा कहले
2: गोटे अछि मंदिर अछि नागेश्वर कालिया बुदा आपन जानिसिबे
0: निहाती जानि छी
2: गुरु क्षेत्र मंदिर
0: आज्ञा
2: हमर से मंदिरटा होछि नई भिस्ते रे नागेश्वर मंदिर बेली कि हमर सेठी सेटा नाडा हमर
0: बहुत निपट एरिया बहुत सुंदर लगे मुझे बुलाबूली कार्तिक पूर्णमी समय बहुत सुंदर लगे से समय बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ी नमस्कार देखु टाउन रुहतु गाँव रुहतु सेमती किसी ना नई पाखे अच्छी मानते नई को एंजय करवा निहाती दरकार जी जो आम टिके समय बाहर करई पाख को देखिबा तारो मजा केते सुंदर देखिबा नेक्स्ट कॉल के करिछंती कोठु करिछंती हेलो हेलो के कहउछंती कोठु कहउछंती
3: मैम नमस्कार
0: नमस्कार के कहउछंती कोठु कहउछंती
3: हम ढाका रो सुनील कुमार साहब कहउले
0: कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत
3: हां
0: कोन कहिबे आजरा टॉपिक विषय रे
3: आजरा टॉपिक हो जे तो छोटो छुआ दिन कथा मन पड़ जाउ जे
0: कोन कहिबे
3: जो माँ कथा जो पोखर रे जाई गाधया से ता मन अफला स्मृति से
0: आउ कोन करी चंती

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ओडीएफ से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के

कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

रावण ने छल कपट करके सीता जी का हरण किया। साधारण मनुष्यों की भांति दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम से लौटते हुए शिव जी ने प्रभु को देखा तो उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। उन्होंने उन्हें सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और अपने मार्ग पर चलते रहे। सती के मन में शंकर की यह दशा देखकर संदेह उत्पन्न हो गया। उन्हें शंका हुई कि जो स्वयं जगत का ईश्वर है, देवता मनुष्य तथा मुनि जिसके सामने सिर नवाते हैं, क्या वह एक राजपुत्र को इस प्रकार प्रणाम करेगा?

0: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मिलोनी इत्येषा अवदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्व रूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च द्विपाक्षिक सम्बन्धाः अधुना स्वस्य पूर्णक्षमतया साधयितुं समर्थाः सन्ति। गत केषुचित् वर्षेषु भारत इटली देशयोः मध्ये सम्बन्धाः अभूतपूर्वगत्या विस्तारिताः सन्ति, अधुना च निर्णायकं स्तरम् अवाप्नोत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा तस्य इटली देशीया समकक्षीया जॉर्जिया मिलोनी इत्युभाभ्याम लिखिते संयुक्त लेखे उभयोः देशयोः मध्ये संबंधः सौहार्दपूर्ण स्नेहात् विशेष सामरिक सहभागित्वेन विकसितः अस्ति, यस्य आधारः स्वातंत्रस्य, लोकतंत्रस्य, भविष्यस्य कृते संयुक्त दृष्ट्याधारित मूल्येषु च निहितास्ति, उभौ नेतारौ प्रकाशितवन्तः। नेतारौ उक्तवन्तः यत् यदा वैश्विक व्यवस्थायां गहन परिवर्तनं प्रचलति तदा भारत इटली सहभागित्वं उच्चतम राजनैतिक संस्थागत स्तरेषु नियमित आदान प्रदान द्वारा दर्शितमस्ति। एकविंश्यां शताब्द्यां समृद्धिः सुरक्षां च राष्ट्राणां नूतनाशयस्य ऊर्जा परिवर्तनस्य प्रबन्धस्य सामरिक सार्वभौमत्वस्य सुदृढीकरणस्य च क्षमतायाः उपरि परस्पर समन्वयं प्रतिबिम्बयति इति उभौ उक्तवन्तौ। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। रक्षानुसंधान विकास संघटनेन डीआरडीओ इत्यनेन देशस्य रक्षाक्षेत्राय एकं महत्वपूर्णोपलक्ष्यं साधितम्, यस्मिन् मानवरहितं वायुयानेन प्रक्षेपितं सटीक निर्देशित V3 प्रक्षेपास्त्रस्य अंतिम विकास परीक्षणानां सफलतया संपादितम्। आन्ध्रप्रदेशे कुर्नूलस्य समीपे डीआरडीओ परीक्षण परिधि मध्ये परीक्षणं जातम्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह डीआरडीओ संस्थाया अभिनंदनम कृत्वा रक्षाक्षेत्रे स्वावलंबनार्थं प्राप्तं व्यूहात्मकं सोपानमिति वर्णितम्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अद्य सियोल नगरे दक्षिण कोरिया देशस्य रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासनस्य मंत्रिणा ली योंग चुल इत्यनेन सह मिलितवान्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय सन्देशे श्री सिंहः अवदत् यत् उपवेशने उभौ पक्षौ संयुक्त विकासस्य, संयुक्त उत्पादस्य, संयुक्त निर्यातस्य च मार्गाणां निर्माणार्थं सहभागी प्रयासानां उपयोगाय सहमतिं प्रकटितवन्तौ। सः अग्रे अवदत् यत् द्वयोः देशयोः नवान्वेषण व्यवस्थायाः समन्वयार्थं महत्वाकांक्षी काइंड एक्स उपक्रमस्य संभावनायाः उद्घाटनस्य मार्गचित्रस्य विषये अपि विचारः अभवत्। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य आगामि जनगणनायां जातिगणनां कर्तुं केन्द्रस्य निर्णयस्य विरोधे याचिका अस्वीकृतम्। उक्तं च यत् अयं विषयः सर्वकारस्य नीतिक्षेत्रस्यान्तर्गतमायाति। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य नेतृत्वे पीठेन उक्तं यत् सर्वकारेण तेषां कृते कल्याणकारी उपायान् कल्पयितुम् अनुन्नत वर्गेण सम्बद्धानां जनानां संख्या अवश्यमेव ज्ञातव्या। न्यायपीठेन उक्तं यत् एतादृशं दत्तांश संग्रहणे किमपि अनुचितं नास्ति तथा च विषयेऽस्मिन् हस्तक्षेपं कर्तुं निराकृतम्। केन्द्रीय मार्ग परिवहन राजमार्ग मन्त्रिणा नितिन गडकरी वर्येण अद्य नवदिल्ल्यां मन्त्रालयस्य हिन्दी परामर्श समितेः सभायाः अध्यक्षा कृता। सामाजिकान्तर्जालीये पटले लिखिते लेखे श्री गडकरी वर्यः अवदत् यत् हिन्दी केवलं भाषा नास्ति, सा तु राष्ट्रस्य एकीकरणस्य प्रबल माध्यमरूपेण कार्यं करोति। केन्द्रीय मन्त्रिणा उक्तं यत् मन्त्रालयस्य अधिकतमं कार्यं हिन्दीभाषायाम् एव भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तुं

तस्य प्रयासः अस्ति। भारत ऋतुविभागेन अस्मिन् सप्ताहे उत्तर पश्चिम भारते तथा मध्य भारते तीव्रतर उष्ण तरंगस्य स्थितेः संभावना प्रकटिता अस्ति। आईएमडी इत्यस्यानुसारं आगामिषु चतुर्षु दिनेषु दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्ण तरंगस्य स्थितिः भवितुमर्हति। अत्रांतरे असम, मेघालय, केरलम, माहे, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, करैकल, अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु च श्वः यावत् प्रचंड वृष्टेः अपेक्षा अस्ति। अन्ते क्रीडा वार्तायां, आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरस्य ईडन गार्डन्स इत्यत्र मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति।

म्यूजिकली योर्स 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कडकते सी दिल तक एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा मन की बात शीर्षक भारतर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देशवासी उद्देश्य उद्बोधन शुणिपारे मे मस 31 तारीख रविवार दिन 11टा समय आकाशवाणी सबु केन्द्र विविध भारती सेवा डीटीएच सेवा एफएम सेवा और आकाशवाणी अधीनस्थ गोष्ठी बेतार केन्द्र में प्रधानमंत्री मनर कथा शुणाक मिल राज्य समस्त आकाशवाणी केन्द्र मन की बात ओडिया भाषातर प्रचारित होदिन 31 तारीख रविवार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देशवासी उद्देश्य उद्बोधन ठिक परे पुणी थरे सही रविवार राति 8टा समय जो श्रोताबंध मन की बात निज निजर मतव्यक्त करने को चाहती से प्रधानमंत्री कार्यालय वेबसाइट mygov.in टोल फ्री नंबर 1800117800 टोल फ्री नंबर टी कही रखु 1800117800 घोषणाटी शेष होला ट्यून करी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी

वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସି ଦିଲ୍ ତକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମାଚାର। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପରେ ଶୁଣିପାରିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଟ୍ 9। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर।

0: करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो दो साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है, और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा, और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
0: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FA.

रेनबो एसएमएस रे नेक्स्ट एसएमएस करिछंती लीजा श्रीधर ओम श्रिया रंगमाटिया मंचेश्वर भुवनेश्वर रु शुणवाक चाहिछंती कन्यादान फिल्म रु सुरेश वाडेकर कंठरी सुंदर गीतटी।

चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा अंजाम क्या।

SMS रे हम सहित जोड़ी हितले हालु भाई सैया आठगढ़ रु एवं आभा सेन राजकुमार भरद्वाज विमल श्रीवास्तव मनीष शर्मा रोहित सेन दीपक कुमार अशोक कुमार अलीशा पा तमन्ना रेड्डी टाटा स्टील प्लांट।

0: sese karışu Rainbow SMS. News in Hindi relay kori prachar karuchu Akashvani Delhi ro.
1: Namaskar, Akashvani samachar ke saath main Sir Firozi. भारत और इटली ने आज कृषि दुर्लभ खनिजों आयुर्वेद विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली

0: एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ट्यून करिछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो का टेक दिल सी दिल तक।

म्यूजिकली योर्स 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो का टक दिल से दिल तक स्टूडियो घंटे समय रात 11:08 हेबा को जाउछि वर्तमान सुनंतु आसंता काली प्रसारित हेबा थिबा कार्यक्रम संपर्क रे सूचना भक्ति गीतर कार्यक्रम अर्घ्य थाली शुणबे सकाळ 6:05 रे अतिबड़ी श्री जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद भागवतर 42वां भाग शुणिपारे सकाळ 6:40 रे सकाळ 7:10 रे आमर स्वास्थ्य एथिरे विषय रहिछि चा एवं आमर स्वास्थ्य एहि विषय रे आलोचना करिवे डाक्टर अश्विनी कुमार साहू शुभ सकाळ शुणिपारे सकाळ 7:25 रे सकाळ 8:30 रे शुणिबे मॉर्निंग मेलोडी सकाळ 9:00 रे टायल इन लाइव चिटचाट एथिरे निर्धारित विषय रे फोन कॉल करी निजर मत शेयर करि परिबे सकाळ 9:30 रे प्रायोजित कार्यक्रम स्कूल टाइम बाय भारत मसाला सुनि परिबे दिन 10:00 रे सुनिबे रेनबो एसएमएस दिन 11:00 रे सुनिबे कलाकार पुरणा हिंदी चलचित्र गीत सुनि परिबे दिन 11:30 रे दिन 12:00 रे रहिछि कार्यक्रम किछि कथा किछि गीत आज चर्चा रे सुनि परिबे दिन 10:00 रे एवं निर्धारित विषय रे एसएमएस एवं व्हाट्सएप माध्यम रे निजर मत रखिपारे शुणिले आसंताकाली प्रसारित होबाक थिबा कार्यक्रम संपर्क रे सूचना ट्यून करिछन्ते 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल सी दिल तक एतेबेळ जाए ज्योति थिला आपणक सहित तबे एठी शेष करुछु आजर अधिवेशन परवर्ती कार्यक्रम रिली करी प्रचार करुछु आकाशवाणी एफएम गोल्ड रु सकाळ 5:53 पर्यंत समस्तित समयर दास समय एबे कहुछि ज्योति को दियंतु विदाय आउ गोटे दिन रे पुणी फेरिबी आपणक पाखक ढेर सारा कथा ढेर सारा गीत ढेर सारा मस्ती नै तबे सेतबेळ जाए रहुछि नमस्कार शुभरात्रि।

सुनुछन्ती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को दिल से दिल तक वर्तमान सुनंतु अति बड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवतर 40 तम भागा।

हर किसी के सपने हैं, हर किसी के सपने हैं, हर किसी की कहानी है, बस छनक से ही पहचान लो इन घुंघरुओं की दास्तान पुरानी है।

मॉर्निंग मेलोडी चालीची म्यूजिक मित्रानो सह केवड़ा केवड़ा 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक रे दिल से दिल तक आपण आमक सुनि परचंती न्यूज ऑन एआईआर आप माध्यम रे भी तुम ही से है जो जितना है

तुम्ही से है जो जितना है सब तुम्हारा ही तो भाई। बना लो घुंघरू पायल का, बना लो घुंघरू पायल का, न चालो जितना जी चाहे।

मीठी मीठी बातों के साथ ये झंकार पायल की मीठी सी, हम सब कुछ भूल जाते हैं कुछ पल के लिए जब तुम आते हो सामने धीरे से, पायल के मधुर मधुर आवाज लिए। ये घुंघरू भी ना चैन से जीने देते हैं ना सोने, बस इनकी छनकती खनकती आवाज बस ऐसे ही सुनते रहे ऐसा लगता है ना।

अब ये किसको बहलाएगी ये पायल, किस आंगन घुंघरू बजाएगी। घुंघुर गोटे एमिति प्रतीक जहा संगीतर ताले ताले नृत्य सृष्टि करे एवं संगीत सह तार एभली संजोग एभली जुगलबंदी जहा सृष्टि करे अपूर्व लास्य अपूर्व छंद तुळी उठे ए घुंघुर सकाशे।

0: Hey, Sathi, tune Kurichandi 100.4 Akashwani FM Rainbow Kataku. Those are the dial in live chit chat. Rasama Echi. Oh, Aji, Kotha Havame Amoghora Visere. The big Hora Visere of Havut Pekon Kothava. Ede Kondu, Jimtiki Sakaru Sakaru Hore Katabla Koti, a brush Kotla, tap Kulidoche, Pani Bohichalici. Koti fan lagichi to lagichi, coat light lagichi to lagichi. अरे बाबा ये सब जिनसर चेते में सचेतन न होबा आमी निजे ही निजर क्षति करिबा साथी कारण ई जो जे कोनोसी पानी हो किंबा इलेक्ट्रिसिटी हो जहां भी हो ताकु जति आमे अपचय करिबा तेबे आमे ही आगु को जाई असुविधा रे पड़िबा एवं अमर जो फ्यूचर जनरेशन अछंती से माने मध्य बहुत असुविधा रे सम्मुखीन हेबे तेनु आजर टॉपिक अछि जे आपण निज घरे किपरि करंती शक्ति संचय आउ थरे कहि रखु छी टॉपिक निज घरे आपण किपरि करंती शक्ति रा संचय ए संपर्क रे जदि मतामत देबा को चाहु थांती तेबे आम पख को डायल कर परबे डायल इन नंबर टी होछि 0671230-3153 एवं कोंतु आपण घरे किपरि करंती शक्ति संचय आउ आम पाखु को कॉल लागि जाई छी माने कॉलर जोड़ी ही सलेनी आम सह देखना बाकी कर छथि कॉल हेलो
1: जय जगन्नाथ नमस्कार
0: नमस्कार के कहो छथि कोठो कहो छथि
1: मु रेडियो लवर नारायण प्रधान बी ब्रह्मपुर बुगुडा जिला गंजम
0: केमती छथि भाई
1: बहुत बढ़िया अछि मा तारातारिणी का कृपा रु हमा बुढी थारे कथा कुरानी को कृपा रु अपन केमती अछि
0: बहुत बढ़िया आज रे टॉपिक ऊपर कोन कहबे
1: দেখন্তু এত শক্তি সঞ্চয় উপরে আছে টপিক আউ কয়ে গলে মু সেতি প্রতি গুরুত্ব দান মানে দিয়ে তো গলে মু আনে

0: हेलो
1: हेलो मैडम नमस्कार
0: नमस्कार किए कहते कौ कहते
1: संध्याराणी सुतर फ्रम पट्टामुंडे मठसाई
0: केमती अच्छा
1: भल अच्छे खरा तो हूँ
0: अच्छा बहुत बढ़िया आउ आज टॉपिक ऊपर कौन कहबे
1: टॉपिक रखी अबिका समय खरा समय शक्ति संकट बहु परिमाण एक रे जल संकट द्वितीयतरे आमर जो गैस संकट तृतीयतरे आमर विद्युत संकट तीनटा पूरा इम्पोर्टेंट संकट तीनटा को बंचवा को हेले आमु किछि सचेतनता लाभ करया पड़ियो कोन ना आमे जेतले पानी खोली दे के आसे मु कुओ हो कि हस्बैंड होतु बंद करया पड़े काईना पानी रो सुविधा पूरा तापर द्वितीयतरे मु केतले केमती गैस रे लगेथि खीरो खीरो बसे देथे बहुत समय
0: स्वीकार कर भूल रेक्टिफाई करिबा सेटा बहुत बड़ कथा निश्चय शक्ति संचय करंतु ठीक निहाते ठीक
1: आमे एही समस्त घर ही माने आमे माने मिडिल सोसाइटी रे रहू छी आमे को हाई प्रोफाइल रे रहू नै जे तो आमो को सावधानता नकले आमे ही हैरान हो
0: निहाते निहाते देखलो शक्ति संचय गोटे इमेज जिंस से लो हो मिडिल हो अपर क्लास हो कि हाई क्लास हो समस्त को शक्ति दरकार जदी सरी गला आमे सभी हैरान होबा नै कि
1: करंट पड़े गेला आमे बाहर चावल हो जाउ छी तेंती आमो को सब कथा रे सहज करे
0: निहाते निहाते बहुत बढ़िया बहुत भल लगे संध्या आप सहित कथा कि रही नमस्कार
1: नमस्कार
0: थैंक यू तो संध्याराणी सुतार पट्टामुंडेरु खूब सुंदर कथा शेयर कले सब बड़ कथा है से निज भूल को भी स्वीकार कर कारण समस्त आगे निज भूल को स्वीकार करने ना गट्स दरकार समस्ते करते बहुत बहुत धन्यवाद तो कहार कथा है आपड़ चाहिए बहुत किसी करेंगे आपण हाथ में सबकि तेणु टिके टिके छोट छोट जिनस को आम जदि प्राधान्य दवा तेज आराम आम शक्ति संचय कर तेज देखने किए कर कल हेलो
2: हेलो
0: हाँ हेलो नमस्कार किए
2: कहते
0: हैं कल्पना
2: बहुत
0: बढ़िया तेज आज टॉपिक ऊपर कौन कहे
2: अज्ञा टॉपिक ऊपर तो मु बहुत गैस भी संचय करे बहुत कम माने अर्ध थरे गैस यूज करे
0: तापर
2: इलेक्ट्रिक रे हमर भी संति सब इलेक्ट्रिक जिनस अछि किंतु हमर इलेक्ट्रिक बिल बहुत कम आसे
0: केना आपण संचय करंती
2: अज्ञा
0: कहली इलेक्ट्रिक बिल कम आसु छि माने आपण खूब संचय करंती
2: बहुत
0: भल कथा सचेतन अच्छा मोर कह कथा तो सचेतन अच्छा आखपाखे जो मैंने देखुं मानते करपचय आप बुझा एग्जांपल
2: मोर इलेक्ट्रिक पानी बिल कम
0: बढ़िया से मानन को मध्य सेतिके सिखांतु तके से माने भी सेमति संचय कर परबे ठीक अछि नमस्कार एथिले कल्पना सीडीए सेक्टर 6 कटक रो खूब सुंदर कथा कहले आ जेमति कि से कहले जे से एते सुंदर भाबे संचय करनते जे तांकर इलेक्ट्रिक बिल भी कम आसुचि पानी बिल भी कम आसुचि तो तांखो ठो निश्चय सिखबा दरकार आउ गोटे ब्यूटीफुल गीत सुनिबा भी दरकार।

0: सुनो चंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को दिल से दिल तक म्यूजिक मित्र अनु आज रही आपणक सहित नहीं डायल इन लाइव चिटचैट आज टॉपिक रही केमिति करछन्ति आपण निज घरे शक्ति संचय तो आगक बढ़िया देखनेवा किए करछन्ति कॉल हेलो हेलो
1: हेलो मैडम नमस्कार
0: नमस्कार किए कहछन्ति कोठ कहछन्ति
1: प्रकाश मेरा कहले गोपुर
0: केमिति अछन्ति प्रकाश
1: हेलो
0: आज रो टॉपिक ऊपर कोन कहबे
1: टॉपिक ऊपर कोन कहबे बेसी आमे जळगु नष्ट करू
0: छी

सुन रहे हैं 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को दिल से दिल तक म्यूजिक मित्र अनु रहिचा जे आपन को सह नै रेनबो एसएमएस और रेनबो एसएमएस को आपन जदि चाहू चंती वार्ता पठे पई माने निज मन पसंद रो गीत किछ जदि सुनिया को चाहू जति तेमे हम पख को लेखि पठे परिबे टाइप करन त एफएमआरसी स्पेस देई निज फेवरेट गीत रो प्रथम लाइन लेखन त स्पेस देई निज रो जो फेवरेट गीत रहिचि सेटा क्यों फिल्म बा एल्बम तार ना लेखंतु एवं स्पेस दे निज ना एवं ठिकाना लेखि सीधा पठे दियंतु 09495963210 नंबर रे 88952542000 एटा होची हमर व्हाट्सएप नंबर सेठी मध्ये मेसेज करि परिबे कथा दउछु चेष्टा करिवु सुनि देबाकु आपनकर मनपसंद रो गीत तबे जमशेदपुर झारखंड रु देवेंद्र तांती राकेश तांती प्रकाश निशा कुमारी रेशमा कुमारी दीपाली कुमारी देवेन जी सुनबा को चाहिंचंती चलचित्र हिंदी चलचित्र बलमार गोटे ब्यूटीफुल ट्रैक जहाँ को गाय आशा भोंसले एवं कुमार सानू तो चलन तो सुनबा गीतटी

खान एवं सिमरन कटकरु चलचित्र बेटारु गोटे गीत शुणा चाहते ए गीत टी शुण चाहते सब श्रोता सब आर्जिस्पेशली शुणा चाहते टूना भाईना राजेश नायक गरीब खान एवं बासंती खटुआ शहीदनगर भुवनेश्वर ओके तो चलते शुणा ए गीत टी

एसएमएस माध्यमरे आम पाखकु रिक्वेस्ट करिसेंति कटकरु अभिचारी साहू तपस्या चलचित्रर गोटे ब्यूटिफुल ट्रैक शुणिबाकु चाहिसेंति जाकु गाइछेंति बाणी जयराम एवं चित्त जेना।

प्रेमजी भाई सीडीए सेक्टर 7 मरकत नगर कटक रु सुनिबा चाहै छंती मैंने प्यार किया चलचित्र रो ई गीतटी चलंत सुनिबा।

0: ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୀତଟି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନରଗୌଡ଼ା ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ମହାରାଜ କୀର୍ତ୍ତନପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯୋଗେଶପୁରୀ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ଡିମ୍ପଲ ମୀନାକ୍ଷୀ ନିଶା ତୁଲସୀ ଏବଂ ଦିଶା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତରାନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୋଟେ ବିଡ଼ବଲ ଟ୍ରାକ୍ ଯାହାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ जय जगन्नाथ आज का प्रोग्राम और गीत हमें बहुत पसंद आ रहे हैं जितने तारीफ की जाए उतनी ही कम है सफल प्रस्तुति के प्रस्तुतकर्ता जी को शुभकामनाएं हार्दिक शुभकामनाएं ओके थैंक यू सो मच और लिखे हैं सबसे पहले सभी आरजे और स्मृति मैम को सब प्रेम नमस्कार तो स्मृति मैम को आप बहुत मिस कर रहे हैं बहुत जल्दी आएंगी वो भी फिलहाल अनु आपका जो भी शुभकामनाएं आपने दी वो सब प्रेम हमने एक्सेप्ट कर लिया है थैंक यू सो मच और लीजिए आपका गीत आपके पास पहुंच रहा है लेकिन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद दिल से दिल तक
1: सावित्री मो ऑफिस जाऊ छी
2: निया ए मासर इलेक्ट्रिक बिल भरी दबो
1: बाप रे इत्ते टोका
2: मु तो कहू छी सोलर पैनल लगे दबा मासुकु 300 यूनिट पर्यंत बिल बंची जीवो
1: सेथिरे केते खर्च हेबो जानी छ
2: काई चिंता करू छ सरकार सेथिपे सब्सिडी देउछंती परा
3: आज्ञा हां पीएम सूर्य घर योजना रे केंद्र और राज्य सरकार मोट 138,000 टंका पर्यंत सब्सिडी देउछंती pmsuryaghar.gov.in रे आज ही आवेदन करंतु

वेलकम बैक वन सेकंड ट्यून को छुने 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चले छि कलाकार हां साथी आमे कथा होथिले मोहम्मद रफिंग का विषय रे मोहम्मद रफिंग का जन्म 24 डिसेंबर 1924 मसीह रे पंजाब रो कोटला सुल्तान सिंह ग्राम रे होइथिला

वेलकम बैक वन सेकंड ट्यून कर चुन्दी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल सा दिल तक सो चले ची कलाकार रफी का प्रथम संगीत पंजाबी चलचित्र रे रिकॉर्ड होई थिला परे से मुंबई को जाई हिंदी सिनेमा रे अवसर पाइथिले आरंभ रे से छोटा छोटा गीत गाउथिले किंतु तांकर स्वर रो अलग परिचय शीघ्र ही समस्त मन को आकर्षित करथिला हां साथी संगीत निर्देशक नौसाद तंकु बड़ा अवसर देथिले बैजू बावरा चलचित्र रे गीत गुडी को रफी को ख्याति रो शिखर को ने जाइथिला तंकर भावपूर्ण गायन दर्शक मानक हृदय को स्पर्श करथिला यहाँ परे परे से पछ को खुंची देखिबा को पड़िनथिला तंकु

फ्रेंड्स ट्यून गर्छन्थे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल स दिल तक साथी समय वर्तमान दिन 11:30 बाजी सारिलाणी कोंदिना ओल्ड इज गोल्ड से ओल्ड माने पुरुणा किसी हिंदी चलचित्र गीत एवरग्रीन गीत बैक टू बैक शुणी दूसरे एंजय करथंतु कनेक्टेड रहथंतु 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल स दिल तक सहित

वेलकम बैक वन सेकंड ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चले छि किछि कथा किछि गीत हां साथी खरा हो कि वर्षा सब बळे साथी हि थाए छता जेमिति हमको खरा रो रक्षा दे थाए सूर्य किरण रो रक्षा दे थाए छता सेमिति वर्षा ऋतु आसिले मध्य आकाश रे जेमिति कळा मेघ जमे बिजुळे चमके मेघ गर्जे एवं मूसळ धारा रो वर्षा आरंभ हि जाय सेतबळे जदि छता न थाए ना आमे असम संपूर्ण भावे भिजि जाय थाउ सेई वर्षा रे भिजिले मध्य हमको थंडा जर हि जाय थाए किंतु ए जो खरा रे मध्य गले हमको छता निहाति दरकार आउ सेटा पुनी कळा छता दरकार जहा कि हमको सूर्य किरण रो बहुत प्रोटेक्ट करथाय तेबे साथी ए जो खरा होउची बेले बेले वर्षा मध्य हे जाउची कारण वर्षा के भी अटके परिबेनी बेले बेले काला बैसाखी मध्य हे जाउची वर्षा होउची जुआडे भी जाउछंती ए जो टाण खरा रे कोड जानतनु तो मु कहिबी जदि निश्चिंत किछि काम रहूची सांगरे कळा छता कळा चश्मा पानी नबा पई जमा भी भूलिबेनी आउ ए कथा भी कनेक्टेड हे रहतन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सहित कोड भी छडी जानतनी सुनि दे जगडे ब्यूटीफुल सटाक एन्जॉय करू थांतो जोडी हे रहितांतो

वेलकम बैक वन सेकंड ट्यून करछनी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबोकट एक दिल से दिल तक सो चले छी केछी कथा केछी गीत हां साथी युग बदलिबा संगरे छतार मध्य परिवर्तन हि छी आधुनिक युग रे छतार रूप रे मध्य बहुत परिवर्तन आसी सर छी जेमिति कि पूर्वरु बड़ भारी छता आमे व्यवहार करूथले किंतु वर्तमान फोल्डिंग छता मिलुछि जहाको आमे अति सहज रे बैग रे रखि माने क्यारी करी गोटे जगह रो अन्य जगह को नेकि जाई परुछे एमिति किछि छता अछि जो गुडा को कि स्वयं चालित माने जो बटन वाला छता जहाँ को आमे प्रेस करितले आपे आपे खोली जाई थाए केतक छता मध्य पवन रे भांगी जाए जेमिति पवन रे न भांगिबो सेमिति मध्य तयारी होई छि एहिपरि अनेक उन्नत धरणर छता मध्य आम मार्केट को आसिलानी

किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं है। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश